लाए चश्मे जह तहां मौजूद। सतमें असमान विच बैठा समझण दी थां ते हे भाई ओ प्रभु रूप दरिया तां अंते करन विच लहरां मार रहा है, तू उस विच इशनान करना सी, सो सदा उस दी बंदगी कर, ज्ञान रूपी ऐनक ला के वेख, वो हर थां मौजूद है। अल्लाह पाकं पाक है, शक करो जे दूसर होए, कबीर कर्म करीम का वो करै जाने सोए। इस गल विच कोई शक नहीं कि परमात्मा सब तो पवित्र हस्ती है। मैं इस गल विच तां शक करा जे उस वर्गा कोई होर भी होवे तां। हे कबीर, ओ मनुख ही ये गल समझ सकता है जिसनू वाहिगुरु समझण योग कर देवे। ये बख्शिश उस परमात्मा दे अपने हाथ विच है, इसलिए बंदे खोज दिल हर रोज़ ना फिर परेशानी माहे।